0: Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
6: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears. Give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
0: Legend Kalakar. Sirf Leica Gold par.

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए अखरी ना।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला एती सुरत न पाया नदियां।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म

0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: लाइका गोल्ड
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
5: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
6: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
7: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
6: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
7: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
5: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime location
8: High appreciation
9: In Dubai
10: Welcome to the jungle
8: Film bilkul fake
10: Hamari film army wali
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
10: और स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
8: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
10: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
12: मैं किस लिए फिल्म में
13: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
14: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
15: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
17: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
18: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
19: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: Travel Hub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
5: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
4: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
5: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
6: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
7: Uncle, tumhe pehla thi aawaz chho.
8: Aawaz itle keva.
6: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
8: Maro baap banwani koshish karat tu. बुद्धि बेचिया वैसे तू. अरे जिंदगी अभी मौज थी जीव जे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे.
6: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
8: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर.
9: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
10: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है. बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10. विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA.
13: Backstage Siblings, फर्स्ट एवर यूके परफॉर्मेंस हैपनिंग ऑन द 9th एंड 10th ऑफ अक्टूबर 2026 एट SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
9: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
14: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
9: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
14: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
9: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
14: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good hits in the sun with Leica Gold.
13: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: जी आशा भोसले और शशि कपूर की आवाजों में था ये गाना फिल्म सुहाग से, जो 1979 में आई थी। उससे पहले आपने शरण प्रभाकर और बप्पी लहरी की आवाज में गीत सुना। और लीजिए दो गीतों के साथ आज के शो की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागतम। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज भी ऋतु शर्मा हाजिर है आपका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक, और सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। उम्मीद है सब मजे में है और इस मौसम का मजा ले रहे हैं या फिर परेशान हो गए हैं, इस बारे में बात होगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। लेकिन एंड ऑफ जून यानी कि जून के खत्म होने से पहले पहले आपको 75 पाउंड्स का वाउचर मिल सकता है एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स एंड ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Radio. Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज आपको बता दें कि ग्रुप जे में जॉर्डन और अल्जीरिया की टीम्स खेलेंगी, ग्रुप के में पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान की टीम खेलेंगी, ग्रुप वन में नॉर्वे और सेनेगल, और ग्रुप एल में आज इंग्लैंड और घाना के बीच में मैच होगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: बस इस गाने में बात तो बिल्कुल सही कही है और खूबसूरत गीत है आशा जी मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में। आई थिंक इस फिल्म में शमी कपूर थे और ये 1969 में आई थी। तो चलिए इस गीत को भी आप सबके नाम करते हैं और एक बार फिर से सभी का स्वागत कर देते हैं शो में। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम और ये है आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए मेरे आने से ही पहले आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू ज्योति, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू भरत गंगाराम जी, मिस्टर शेख, महेंद्र बजारिया, दिव्या जी हैरो से, गिरीश जी भारत से, रमीला जी, हीता सोलंकी और जितने भी साथी घर में हैं, गार्डन में हैं, किचन में हैं, काम पर हैं, गाड़ी में हैं, बाहर हैं, शॉपिंग पर हैं, जो भी कर रहे हैं सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। साथ देते रहिए क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है आज के प्रमुख समाचारों की।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी भीषण आग के कारण 15 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। इस लापरवाही के मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती हवाएं जो होती हैं उसके कारण तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेर फेर से जुड़ी जांच में SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का गहन ऑडिट कराने की सिफारिश की गई थी। और महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 20,552 करोड़ के बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। अब कुछ खबरें विदेश से, लेकिन उससे पहले ये और बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्री के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हो गई है। और अब समाचार दुनिया से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और धमकियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। कच्चा तेल 2% बढ़कर 82 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जिससे जो आयातक है देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज्य एमिरेट्स द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर द्विपक्षीय बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका की बातचीत खत्म हो गई है, जिसके बारे में ईरानी संवाददाता ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से नाराज होकर बैठक छोड़कर चला गया ईरानी डेलीगेशन, जिसके बाद अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के जरिए एक और बैठक की मांग की है। गालिबाफ कहते हैं कि 80 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैन से कहा कि हम यहाँ बातचीत के लिए आए हैं। समझौते की पहली शर्त में साफ लिखा है कि कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपके राष्ट्रपति ने धमकी दी है, ये जान लो कि हम धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव पर कहा है कि वो इस मुद्दे का हल निकाल लेंगे। और आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 22 जून के दिन एक बार फिर से अर्जेंटीना के लियोनेस मेसी और फ्रांस के सुपरस्टार किलियन एम्बापे के नाम रहा। दोनों ने जबरदस्त प्रदर्शन करके अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाई। अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ही अपने शुरुआती 2-2 मैच जीतकर अब तक अपने अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई हैं, और या कहूँ अगले दौर में पहुंच गई हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लीजिए, ये थी आवाज कुमार शानू और साधना सरगम की। और हमारे गिरीश जी का कहना है कि आप आए और अच्छे गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए। और शोभना राय जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम सुन रही हैं। लेकिन ये जो फिल्म थी मिथुन दा की फिल्म थी, और मिथुन दा को देखिए कितने वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। लगभग 350 से ज़्यादा फिल्म्स में इन्होंने काम किया है और इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत हिट फिल्में की हैं लेकिन उतने ज़्यादा अवार्ड्स उन्हें नहीं मिले जितने मिले हैं मिथुन दा को। और आज भी देखिए कभी कभी हंसते मुस्कुराते हुए टेलीविज़न पर आ जाते हैं और अच्छा लगता है उन्हें देखकर। तो ये थी मिथुन दा की फिल्म, और ये गाना उनकी फिल्म का बड़ा ही पॉपुलर है जिसे आज प्रोग्राम में जगह मिली। थैंक यू साथ देने के लिए। जगदीश जी बुशी में हमारे साथ हैं, रंजन जी हमारे साथ हैं, थैंक यू। और आपको बता दें कि भाई कल रात को क्या बिजलियां चमकी थी, क्या तेज बारिश आई थी, क्या बादलों की गड़गड़ाहट थी। नींद तो खुल गई थी लेकिन मन में खुशी हो रही थी कि अच्छा है, हो जान दो, जितनी बारिश हो रही है कम से कम थोड़ी ठंडक तो हो जाएगी जिससे रात को नींद अच्छी आएगी। और देखिए उस बारिश का फल, आज मौसम अच्छा है, बढ़िया है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, और मतलब बाहर गार्डन में बैठकर प्रोग्राम को सुनने का मज़ा ही अलग है। जैसे कि हमारे साथी हैं जिन्होंने कहा है कि मैं गार्डन में बैठकर आपका शो सुन रहा हूँ, और अब उनका नाम क्या है वो सारे मैसेजेस में कहीं गुम हो गया है। तो बता दीजिए कौन है जो आप गार्डन में बैठे हैं और सुन रहे हैं, आपका नाम कहीं मिस मतलब मैसेजेस में इधर उधर चला गया है। जब तक मैं आपको ये बता देती हूँ।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £100 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: जी हाँ बिल्कुल, ये है आपका मनपसंद रेडियो स्टेशन, जहाँ पर एक बार फिर से याद दिला दूँ रितु शर्मा है आपके साथ सिटिंग इन फॉर रवि जी, क्योंकि रवि शर्मा जी हॉलीडे पर गए हैं इसलिए 2 वीक बाद वो लौटेंगे और तब तक मैं इस शो में आपका साथ दूंगी। एंड रंजन जी आप गार्डन में बैठकर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मानसी जी भी जुड़ गई हैं। तो चलिए अगला गीत आप सभी के नाम करते हैं और मिलते हैं गीत के उस पार चिंतन के साथ।
4: ये है
5: लाइका गोल्ड।
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, Eventim Apollo, Hammersmith। Hamare Ram,
7: book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
6: Exclusive radio partner Like Our radio.
8: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इनटू अ चांस टू विन व्हाइल मेकिंग योर मनी गो इवन फर्दर विद SBI UK।
11: ट्रांसफर £1,000 और मोर इन अ डे टू एंटर आवर डेली ड्रॉ फॉर अ £75 वाउचर।
10: ट्रांसफर £2,000 और मोर इन अ वीक टू एंटर आवर वीकली ड्रॉ फॉर अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन।
11: ट्रांसफर नाउ यूजिंग द योनो SBI UK app, ऑनलाइन बैंकिंग और सिंपली विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच।
10: एंड दैट्स नॉट ऑल, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस एंड कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स।
11: मोर वैल्यू, मोर रिवॉर्ड्स, मोर रीजंस टू चूज SBI UK।
10: ऑफर वैलिड फ्रॉम द 4th ऑफ मे टू द 30th ऑफ जून 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane.
13: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
14: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
15: वेलकम टू द जंगल।
16: फिल्म बिल्कुल फेक,
15: हमारी फिल्म आर्मी वाली
17: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
16: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
15: और स्टार कास्ट है
16: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
18: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
16: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
19: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
20: मैं किस लिए फिल्म में।
21: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
22: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
21: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
22: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
21: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
24: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold.

0: across Greater London. This is Leica Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
1: Top stories this hour. The former chief executive of the SNP has been jailed for misusing more than £400,000 of party cash on things like a luxury motorhome and robot mower. Peter Murrell's been sentenced to 5 years and 3 months in prison. He's the ex-husband of former First Minister Nicola Sturgeon. She claims to have no knowledge of his crimes. Sean Clerkin's the SNP member who raised the original complaint.
2: There did seem a reluctance. People seem to be afraid of taking on Nicola Sturgeon, and Peter Murrell and I decided to jump over the line and make that complaint because I'm not afraid of these people. I never have been afraid of these people.
1: Trains are disrupted and there's reports of house fires caused by lightning strikes as meteorologists warn of extreme weather across England and Wales. Temperatures could hit 40 degrees Celsius this week, leading to schools closing earlier in the day or not opening at all. Andy Burnham could be blocked from being guaranteed as the next Prime Minister if senior Labour MPs launch a leadership challenge. He's the only known candidate to replace Sir Keir Starmer so far. The new MP for Makerfield has the backing of former Health Secretary Wes Streeting. Nominations open in around a fortnight. Greens leader Zach Polanski believes change is needed.
3: I want change too, and I think Keir Starmer's legacy is quite clear. Our bills are too high, our wages are too low. The 50 wealthiest families in this country own more wealth than 34 million people.
1: A second boy's been charged with murder after a teenager was stabbed in Battersea in southwest London on Saturday. A 15-year-old's due in court. Sun Care sales increased 128%, while there was a 40% rise in fresh beef burgers being sold during the period of the previous heatwave at the end of May. World Panel says grocery price inflation slowed. And finally in sport, Hull KR have announced the former New Zealand international Nathan Kalis will be becoming their new head coach from the start of next season's Super League campaign. The 48-year-old will be replacing Willie Peters at the Champions. From Sky News, I'm Chris Milligan.
0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
4: We're here at the Coral Fan Zone and the fans are ready to get their bet builders on. Here's the Fancy Dress Brigade, head-to-toe in chainmail, and the Eternal Optimists. Winners 26 already tattooed. Brave! With Coral's Bet Builder Refund, if your bet on the England game loses, get your money back as a free bet. Rewarding the fans. Coral, we're here for it.
5: 18 plus online, opt-in to selected World Cup games. One free bet per customer per game. Free bet value varies. Min £1, max £10. Restrictions and T's and C's apply. Gambleaware.org.
0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
6: गुड मॉर्निंग, आइए हो जाए मौसम की बात. आज मौसम ड्राई रहने वाला है, अच्छी खासी सनशाइन देखने को मिलने वाली है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्रीज को टच करेगा और मिडलैंड्स में 33 डिग्रीज को.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: Like a gold.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: Like a gold. Chintan.
6: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स. और इस शो में आज ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी. जैसा कि आप जान ही गए हैं अब तक कि रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर हैं, तो उनकी जगह आज इस शो में मैं आपके साथ रहूंगी. और 11 बजे की खबरों का समय, खबरों के बाद का समय चिंतन का है. तो चलिए करते हैं आज के चिंतन की शुरुआत, यानी कि आज के विचार की शुरुआत. आज के चिंतन में बात करने वाली हूँ श्री राम की. अगर हम श्री राम का जीवन देखें तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ हर प्रसंग अपने आप में एक सीख है. उनसे जुड़ी हर बात हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ ले जाती है. उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर और गहरा प्रसंग है, जिसे आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो हमें अहंकार से मुक्ति, प्रेम और समानता की बहुत बड़ी सीख देता है। और ये प्रसंग प्रभु का बड़प्पन भी दिखाता है। हम सबने सुना है कि जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले तो पैदल ही थे, सोने जवाहरात, अच्छे भारी भरकम कपड़े, रथ घोड़े सब छोड़कर सिर्फ वनवासी की वेशभूषा में चल पड़े थे और पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो जब आगे बढ़ रहे थे, उन्हें मार्ग में गंगा नदी पार करनी थी। और जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी के किनारे केवट अपनी नाव लेकर खड़ा था। श्री राम ने केवट से कहा, भैया हमें अपनी नाव में बैठाकर जरा नदी के उस पार ले चलो। लेकिन केवट प्रभु राम को पहचान गया था। जब स्वयं ईश्वर केवट के सामने खड़े हों तो केवट उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। केवट ने श्री राम के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। उसने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई ऐसा जादू है कि आपने पत्थर को छूकर उसे भी सुंदर स्त्री बना दिया था। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर आपके पैर की धूल से ये भी सुंदर स्त्री बन गई तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। इसलिए जब तक मैं आपके चरणों को धोकर इसकी धूल नहीं हटा लेता तब तक मैं आपको नाव पर नहीं बैठाऊंगा। केवट का ये भोलापन और चतुर प्रेम देखकर श्री राम मुस्कुरा दिए और उन्होंने हर्ष खुशी खुशी उसे अपने चरण धोने की अनुमति दे दी। केवट ने बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए, उन्हें नदी पार कराई और नदी पार करने के बाद श्री राम को संकोच हुआ कि केवट को उतराई में क्या दें, यानी कि नाव का जो किराया है उसके रूप में क्या दें, क्योंकि वो तो वनवासी के भेष में थे, सब कुछ पीछे छोड़ आए थे। लेकिन माता सीता प्रभु के मन की बात जान गई। उन्होंने अपनी एक कीमती अंगूठी उतार कर श्री राम को दी और जब श्री राम ने वो अंगूठी केवट को देनी चाही तो केवट ने हाथ जोड़ लिए और श्री राम के इस कार्य से केवट की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु क्या कभी एक ही जाति के लोग एक दूसरे से मजदूरी लेते हैं? एक जात के लोग, एक काम करने वाले लोग कभी भी एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते हैं। मैं घाट का केवट हूं, लोगों को गंगा पार कराता हूं, लेकिन आप भवसागर के केवट हैं, आप लोगों की जीवन नैया पार लगाते हैं। आज मैंने आपको नदी पार कराई है, लेकिन जब मेरा समय आए तो आप मुझे इस भवसागर से पार लगा देना प्रभु, यही मेरी उतराई है। श्री राम के इस निश्चल प्रेम को देखकर, केवट के इस प्रेम को देखकर श्री राम गदगद हो गए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। हम सब जानते हैं कि श्री राम एक राजा के पुत्र थे, साक्षात विष्णु के अवतार थे, ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण और एक समाज का जो वंचित वर्ग कहा जाता था उसे अपने गले से लगा लिया बिना एक मिनट भी गवाए। और ये दिखाता है कि जाति, पद, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान को बड़ा बनाता है उसका चरित्र और उसका प्रेम। भगवान होकर भी श्री राम ने केवट के सामने कोई अहंकार नहीं दिखाया। वो उसके प्रेम में विवश हो गए। और देखिए, केवट ने भी भगवान से धन दौलत नहीं मांगी। वो भी चाहता तो उसे पता था कि ये अयोध्या के राजा हैं, इनके पास कोई कमी नहीं, महल दुमहले हीरे जवाहरात मांग सकता था। लेकिन उसने सिर्फ ईश्वर का अवतार आशीर्वाद मांगा और अपने जीवन को भवसागर पार लगाने का वचन मांगा। ये बताता है कि जो असली ज्ञानी होता है ना, उसके लिए जीवन में भौतिक सुखों का कोई अर्थ नहीं होता। जरा संसार की सुख सुविधा से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और अच्छे कर्मों को महत्व दीजिए। उस ईश्वर को याद कीजिए जो आपके जीवन को भवसागर पार लगा सकता है। इस प्रसंग से हमें यही चिंतन करना चाहिए कि सच्चे मन से हमें ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, उसके यहां देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। आपकी बात की सुनवाई वहां जरूर होती है।

आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज का यही चिंतन था, आज का यही विचार था, और इस गाने को हमने नया दौर फिल्म से लिया था, जिसकी एक एक लाइन इतनी सही लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से इस गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लिखने वाले ने क्या खूब गीत लिखा है, और जिन्होंने लिखा है उनका नाम है साहिर लुधियानवी। आज के चिंतन को, आज के विचार को आपने पसंद किया है, थैंक यू। हमारे राजेश जी कहते हैं कि आज के चिंतन में एक और अच्छी बात थी, जिसे आपने, एक संदेश था जिसे आपने अच्छी तरह पेश किया, थैंक यू। हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि हम अपने आप के प्रति सच्चे रहें, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें, और कर्तव्यों को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाएं, और उस ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर इस उम्मीद को

0: रनन जी, महेंद्र बजारिया जी, जैस्मीन, थैंक यू, स्वागत है आपका। थैंक यू गिरीश जी, भारती दीदी जी, थैंक यू जगदीश जी, अर्जुन जी, राजीव पटेल, नीलम जी, रागिनी, हरविंदर, थैंक यू विजय घुनोवा जी, नरेंद्र पांचाल जी, उल्लास जी, हरीश रुदा, जासू जी, मृदु जी, मानसी जी, थैंक यू, आप सभी के ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। यही था आज का चिंतन। चलिए आज के चिंतन को समेटते हैं, कल एक और नया चिंतन लेकर आएंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app। और जून के खत्म होने से पहले पहले आप जीत सकते हैं 75 pounds का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज मैचेस जो होने वाले हैं ग्रुप वन में, नॉर्वे और सेनेगल की टीम साथ साथ खेलेंगी, पोर्चुगल और उज़्बेकिस्तान के बीच में मैच होगा, आज इंग्लैंड और घाना की टीम भी खेलने वाली हैं, और इन मैचेस को तो आप एंजॉय कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है जब आप हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से बात करते हैं और कहते हैं कि लाइका, देन वो आपको 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस दे देंगे।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Yeah, hai Like a Gold.

0: बनवानी कोशिश करे तू बुद्धि वेची आवे छे तू अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी न पूछे
1: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
0: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Hi, hello, get show. Hu chu Kirti Dave ana ashu thayu. Arara, public demand phariti aavi rahi chu London maru navu natak laine Patni Premier League એટલે કે PPL. Yes, from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
1: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
8: Travel Hub.
7: At all protected.
6: Leica.
9: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. आप choose करो अपना style. बाकी सब Star Tours experience संभाल लेता है. Visit StarTours.co.uk.

0: सही कह रहे हैं महेंद्र जी कि हम राजेश खन्ना को इस फिल्म में भूल नहीं सकते, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म राजेश खन्ना से ज़्यादा आर डी बर्मन के म्यूज़िक के लिए जानी जाती है। उनका म्यूज़िक इस फिल्म में फिल्म से ज़्यादा पसंद किया गया था। और देखिए तभी तो आज भी ये गाना जब भी बजता है, बज रहा है, तो इतने सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ज्योति लिखती हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना, मेरा फेवरेट है, ऋतु मेरे नाम कर दो। किया हमने ज्योति जी आपको दिया, मानसी जी ये गाना हमने आपको भी दिया, भारती जी आपको नया दौर का भजन बहुत सुंदर लगा और कहती हैं कि जो आज का जो चिंतन था मेरी आँखों में आंसू ले आया। तो जब आप प्रभु की बातों में, प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं ना, तो ये आँखों से आंसू अपने आप ही जाने क्यों बहने लगते हैं। मैंने भी ये अनुभव किया है। मैं ज़रूर आपके साथ किस्सा शेयर करूंगी, लेकिन थैंक यू भारती जी, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं। थैंक यू विजय गुनवा जी। और सीमा कहती हैं कि मैं जब भी गाड़ी में होती हूँ मुझे आपका शो सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है सीमा, आपने तो दिल खुश कर दिया। और रोहित, आपका मैसेज आया है, कहाँ थे इतने दिन, बड़े दिनों बाद आपने आज मैसेज भेजा है, लेकिन स्वागत है इस शो में आपका भी। पूजा हमारे साथ है, कामिनी पटेल, रक्षा जी हमें सुन रही हैं और रानी जी सुन रही हैं, क्या बात है। चलिए अगला गीत आप सबको डेडिकेट करते हैं,
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। लिसन व्हेयरएवर यू आर बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप नाउ।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये रफी साहब और लता जी के आवाज में एसडी बर्मन के म्यूजिक पर देवानंद की फिल्म जूल थी से लिया था ये गाना। और शेखर जी कहते हैं कि आपने अभी आरडी बर्मन की म्यूजिक का गीत सुनवाया और अब आप एसडी बर्मन का गीत सुनवा रही हैं, बहुत फर्क है, बाप आखिर बाप होता है। तो कुछ भी हो जाए बाप तो बाप ही रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता। थैंक यू, आपको गीत अच्छा लगा तो चलिए हम ये गाना आपको डेडिकेट किए देते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और मैसेजेस आए हैं जिन्हें जरूर जिक्र करूंगी। ये मैसेज भेजा है मुझे परहित कालिया जी आपने। तो सबसे पहले तो कहूंगी कि आपका नाम बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार सुना है। और आपने कहा कि जो चिंतन का मैसेज था मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ उसने। और राम राम आपको भी, जय श्री राम एंड थैंक यू साथ देने के लिए। इसके अलावा जावेद अवान ब्लैकबर्न में सुन रहे हैं और कहते हैं हमें तुमसे प्यार कितना, ये गाना जब आपने बजाया तो मैंने भी इसके साथ साथ गाना गाया पर पता नहीं कोई सुनने वाला था या नहीं। तो मैं आपको बता दूं जावेद जी, अगर आप अच्छा गा रहे होंगे तो ज़रूर आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर गाया अच्छा नहीं होगा तो फिर अब मैं क्या बहूँ, आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन थैंक यू, आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, अच्छी बात है एंड मुझे अच्छा लगा आपके मैसेज पढ़कर, थैंक यू। तो बढ़ जाते हैं आगे और एक और बहुत खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ। इस बार आवाज है मुकेश जी की।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। तो इस बार का नया टॉपिक है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का साउथ एशियन वेमेन इन स्पोर्ट्स, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने। और आप इसे सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: Nothing beats a Jet 2 holiday. So who's ready for the best summer yet? We have loads of free Chill Place holidays available in over 75 destinations like Dalaman, Dubrovnik and Majorca. Plus, you'll get 22 kilograms of baggage included. Book now and save up to £400 per family of four. Jet 2 holidays. Package holidays you can trust. After international protected. Subject to availability and conditions.
4: ये है
5: लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners Leica Radio.
12: Welcome to the jungle.
13: Film? बिल्कुल fake.
12: हमारी film army वाली. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
13: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
14: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून।
14: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
15: मैं किस लिए फिल्म में?
16: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
17: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
16: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
17: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
16: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
18: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
7: BAPS મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
18: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
7: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
18: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
7: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
18: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
7: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
20: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
21: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
20: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
22: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
23: Making summer feel better. This is Laika Gold.

0: यस, आज बड़े दिनों बाद बेटा फिल्म का ये गाना प्रोग्राम में शामिल किया है और इस गाने में, इस फिल्म में माधुरी क्या खूबसूरत लगी थी। और माधुरी तो है ही खूबसूरत। अभी कुछ दिन पहले वो इंडियाज़ बेस्ट डांसर में भी आई थी, तब भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी हाल फिलहाल में ही उनकी एक फिल्म भी आई है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसका नाम है माँ बहन। और मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं है, आप में से किसी ने देखी है क्या? जिन्होंने देखी है वो बता रहे हैं कि इस फिल्म में वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में नज़र आ रही हैं और उसमें उन्होंने एक अलग ही तरह का कैरेक्टर निभाया है। कहते हैं जो रंगों से भरा हुआ है लेकिन उसमें एक इमोशनल बात भी है। तो मुझे अभी समय नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जल्द ही इस फिल्म को देखूंगी क्योंकि लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म के कारण उनकी जो एक प्रॉपर छवि थी ना, धक धक गर्ल वाली, वो भी काफ़ी अलग इमेज इस फिल्म के थ्रू उनकी हो रही है। तो बताइए अगर आपने देखी है, कैसी लगी आपको ये फिल्म माधुरी की नई माँ बहन, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, और ये तब होगा जब आप ट्रांसफर करते हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा जून के खत्म होने से पहले आप जीत सकते हैं 75 पाउंड्स का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर टू 1000 pounds एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
3: 4 beers, please, garçon!
2: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
7: Lattuke halone nandala.
6: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold.

0: खिलौना फिल्म से था ये गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में। और नरेंद्र पांचाल जी कहते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नरेंद्र जी, हमने ये गाना आपको डेडिकेट किया। ये गाना मैंने खिलौना फिल्म से लिया था, जिसमें हीरो तो थे संजीव कुमार, साथ में थी मुमताज़, लेकिन ये गीत जितेंद्र और मुमताज़ पर पिक्चराइज किया गया था। और इस फिल्म के लिए मुमताज़ को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में संजीव कुमार को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। एनीवेज, ये गीत आप सबने पसंद किया। और आपको बता दें कि भाई ऐसे और भी गाने आप लाइव सुन सकते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं, 90s के गीत ज़रूर, या फिर हरिहरन जी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो कौन से गाने सुनवाते हैं। तो आपको याद दिला दें कि लेजेंडरी हरिहरन यूके आ रहे हैं, यूके सोल इंडिया उन्हें लेकर आ रहे हैं एट रॉयल फेस्टिवल हॉल में लंदन। सैटरडे 4 जुलाई को उनका शो होने जा रहा है। टिकट्स अवेलेबल है southbankcenter.co.uk पर, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है लाइका रेडियो नेटवर्क। अगर आप हरिहरन को लाइव सुनना चाहते हैं तो फौरन अपने टिकट्स बुक कराइए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और दिया, आपका भी मैसेज आया है, आप भी शो को सुन रही हैं और गीतों को एंजॉय कर रही हैं, तो चलिए अगला गीत दिया आपके नाम पर करते हैं।

0: शरीफ बदमाश का ये गाना प्रज्ञा आपको डेडिकेट करते हैं और आपके साथ साथ हमारे चंदू जी प्रोग्राम सुन रहे हैं। स्वागत है चंदू जी आपका। और शमीम शफीक हेस से मैसेज भेजती हैं, कहती हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है, मैं तो बस रूम में पंखा चला के आपका शो एंजॉय कर रही हूँ। इससे अच्छी बात शमीम जी कुछ हो ही नहीं सकती, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बस आराम से हमारा साथ देते रहिए। और आपको बताते चले आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत बजाने से पहले, Feel Good Track
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आपको बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आ रहा है माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, जिसके बारे में हम आजकल बातें भी कर रहे हैं और आज चिंतन भी हमारे राम के बारे में था। और अगर आप श्री राम के बारे में और भी जानना चाहते हैं और उनको उनका जो नाटक है उसे एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं और स्टेज पर देखने का मज़ा ही कुछ और है, तो आपको याद दिला दें कि ये सब होने जा रहा है बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई के बीच में एट लंदन्स एवेंटियम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा जो एक जाने माने एक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया है, रावण का कैरेक्टर निभाने वाले हैं और राहुल बुच्चर बने हैं राम। तो इस शो को अगर आप देखने जाना चाहते हैं जिसका नाम है हमारे राम, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कराइए।
2: दिस इज लाइका गोल्ड,
3: ये है
2: लाइका गोल्ड।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: चले।
1: लीजिए, किशोर दा और लता जी की आवाजों में था ये गाना। ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है। और हमारी नलिनी जी का कहना है कि ऋतु, जो गाने आज आपने बजाए हैं सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं। क्या बात है, आपको मजा आ गया, ये पढ़कर मुझे भी मजा आ गया। और आपको श्री राम का चिंतन भी बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा कि ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई, आपने ये 3 में सुनी थी। क्या बात है, अच्छी बातें तो बार बार सुननी चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज है नहीं ना। क्योंकि जितनी बार आप अच्छी बातें सुनेंगे उतनी ही वो आपके अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा मन होता है, खराब देखेंगे तो खराब मन होता है। और इसीलिए चिंतन में हमेशा अच्छी बातें लेकर आई जाती हैं। थैंक यू आपके ढेरों मैसेजेस के लिए। और अब समय है खेल के बारे में बात करने का, क्योंकि ICC का वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhaka and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
1: तो लीजिए, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी हैं और इनसे ही जानते हैं कि आज क्या होने वाला है। कमल जी,
4: ऋतु जी, क्या टाइमिंग है आपकी। जस्ट विकेट गई न्यूजीलैंड की और एक ग्लव कैच हुआ जस्ट नाउ फ्रॉम स्कॉटलैंड। सो अभी खेल रहे हैं स्कॉटलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड स्कॉटलैंड इज 131/7 इन देयर 20 ओवर्स। एंड नाउ न्यूजीलैंड इज बैटिंग बट दे आर अंडर प्रेशर। आई मीन अभी 29/3 है 5.3 ओवर्स में और एक कैच ड्रॉप हुआ एंड दे आर बॉलिंग सो वेल, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं बट व्यू इज सो हॉट। But I tell you, there is a very good crowd at the ground and the ground is looking beautiful. Then you've got Sri Lanka playing Ireland this afternoon, the Shamko. Then you've got the big one, Australia-Pakistan. That's going to be an exciting game because Pakistan would like to finish on high before they go home and Australia would want 2 more points to go up and be the top leaders. So Australia around 6 points at the moment, India 4 points, South Africa 4 points, Bangladesh 4 points, and on the other group, England 6 points and West Indies 6 points, and they'll be fighting out tomorrow. So Ritu, at the moment तो गर्मी अच्छी हो और इतने अच्छे songs आप play कर रहे हैं तो crowd को भी अच्छा लग रहा है। इधर सुन रहे हैं, मैंने सुना 2-3 people are listening, but it is a great tournament at the moment. T20 Women's World Cup is going strong and stronger, and we'll give you some more updates as it goes.
1: Thank you, Kamal ji. तो आपको बता दें कि भाई दुबई जाने के लिए जितने भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो अब उठ चुके हैं और इसलिए अब आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। साउथ ऑल ट्रैवल को कॉल कीजिए फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए ऑन 0208-574-8410 पर। और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Need anything from Tesco? Like 3 for £8 on selected Tesco finest picnic food, such as burrata with semi-dried tomatoes or whipped feta and tabbouleh.
6: Club card accepted.
5: Because every little helps. Majority of larger stores ends 11th of October. Club card or app required.
7: Leica Gold. travelhubworld.com
8: कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
9: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
10: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट travelhubworld.com।
0: Great news, Tariq Halal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Rainers Lane.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज जो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: So Gold Rate is £100 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: तो लीजिए आज का साथ बस यहीं तक. मेरे बाद आपका साथ देंगे बाली ब्रह्मभट्ट. मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी. तब तक के लिए बाय बाय.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
6: ये है लाइका गोल्ड.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
12: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
11: डेजर्ट सफारी,
12: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
11: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
12: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
13: साफो ट्रेवल. Atoll Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: Welcome to the jungle.
15: Film bilkul fake.
14: Hamari film army wali.
16: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
15: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
14: और स्टार कास्ट है
15: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट. ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
17: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
15: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
18: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
19: किस लिए फिल्म में.
18: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है?
19: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा। पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट TWPays.com/Laika या कॉल कीजिए 0203129-9840। TWPays, हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत।
20: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
21: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
22: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
23: Up next, Bally Brumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
24: Manoranjan with Ravi Sharma.

चित्रगुप्त का संगीत और प्रेम धवन की लिरिक्स, ये गाने अब नहीं बनते। पैमी जी, आई होप यू लाइक इट। गोपी, यू टू, गुड लक विद योर कीमा कुकिंग टुडे। फिल्म है गेस्ट हाउस, 1959। लाइक अ रेडियो नेटवर्क। जैसे राधानी माला जपी शाम की। यहाँ पे एक हमारी लिसनर है जैस्मिन, वो माला जप रही है रूबी के नाम की, और मैं बाली रूबी बन के उसको जवाब दे रहा हूँ।

0: संतोष जी थैंक यू, ग्लैड यू लाइक दैट सॉन्ग। आपके नाम करते हैं हम तेरे मेरे सपने, फिल्म 1971 की, लता जी ने गाया।
1: This is like a gold across Greater London.
0: कहीं दिन कहीं रात। Next hour we shall remember Rahman.

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: अविष्कार गिर गया हाथ से।
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
0: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म शेखर,
3: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अभिशगन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: दिल ने फिर याद किया. आई नो आई ऑलवेज गेट टियरी व्हेन आई प्ले दैट पर्टिकुलर सॉन्ग व्हिच वाज मुकेश जी का गाया हुआ, जाऊं कहां बता ए दिल, जाऊं कहां बता ए दिल. इन्होंने इतनी गलतियां की अपनी बहन के साथ और वो डायलॉग्स जो बीच बीच में आते हैं वो समझाते हैं. लेकिन अगर आप एक्चुअल वीडियो देखें उस गाने का, जहाँ पे श्यामा ऑफ कोर्स प्लेज द नास्टी भाभी रोल, लेकिन छोटी बहन जो फिल्म थी उसमें नंदा का किरदार और रहमान साहब का किरदार लाजवाब. आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन फ्रॉम व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय. आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ रहमान साहब बिकॉज ही हैड दैट सुआव look about him, a nature, the voice, the acting. He had done several different kinds of roles. Sayyed Rahman Khan, born on 23rd June 1921 till 5th November 1984. Abhi aaj hum unko yaad kar rahe hain on his 105th birth anniversary. Ab dekha jaye to he grew up in Jabalpur. अभी इनकी एंसेस्ट्री देखी जाए तो 1905 में इनके जब अफगानिस्तान से जितने भी एंसेस्टर्स थे दे मूव टू पंजाब इन इंडिया फ्रॉम काबुल अफगानिस्तान. एंड देन इनकी एंसेस्ट्री जो है इट गोज वे बैक टू किंग अमानुल्ला खान ऑफ पगमन एंड फ्रॉम फाउंडर ऑफ दुर्रानी एम्पायर. ये सब पुरानी कहानियाँ हैं लेकिन ही हैड दिस लुक अबाउट हिम, अ वेरी किंगली लुक, एंड वी कैन नो वेयर इट केम फ्रॉम बिकॉज द एंसेस्ट्री वॉज सच. चलो शॉर्टकट मारते हैं, पता लगाते हैं कॉलेज कौन सी थी. ही ग्रू अप इन जबलपुर एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन रॉबर्टसन कॉलेज में पढ़े. He joined the Royal India Air Force after graduation. बहुत देर चला नहीं because he didn't quite enjoy it. So he left and he went for films. वहाँ पे एक कैमरे के पीछे उनको एक नौकरी मिल गई as an assistant director. वहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है. That was the year after college, 1942. जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था एट पूना विच इज पुणे नाउ एज अ पायलट. अपील नहीं किया तो ऑब्वियसली छोड़ दिया, लेकिन आगे जाते हुए अच्छा ही हुआ. हिज मूवी करियर स्टार्टेड विद अ जॉब एज थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर टू विश्राम बेडेकर एट द स्टूडियोज इन पुणे ओनली. एंड देन विश्राम नीडेड An Afghan who could tie a Pashtun turban on one of his characters. Film ki shooting ke dauran unko ek turban bandhwani thi apne hero pe. And Rahman Saab, of course, could do that being a Pashtun himself. And that brought him to the screen for some lead roles. Unhone kaha ke you yourself are a very good looking young man, Vishram Bedekar ne kaha, and that led to him getting lead roles. And one of his major hits as hero was Pyar Ki Jeet Suraiya ke saath. Wo gana hai na, ek dil ke tukde hazar hue, koi yahan gira koi wahan gira. That was a major hit unka Suraiya ke saath. And then he was also interested in marrying Suraiya. लेकिन वो तो पागल दीवानी थी देवानंद के साथ. एंड देन ही ऑल्सो वर्क विद मधुबाला इन पारस परदेस एंड बोथ द फिल्म्स वर क्वाइट ओके यू नो. एंड आगे जाते हुए मीना कुमारी के साथ, गुरुदत्त के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई. एंड देन इनके अवार्ड्स देखे जाए तो सारे नॉमिनेशंस थे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नॉमिनेशंस. फिर सुबह होगी 1958 में, चौदहवीं का चांद 1960, साहेब बीवी और गुलाम 1962, दिल ने फिर याद किया 1966. कुछ कुछ गाने मैंने ऐसे चुने हैं जहाँ पे ही वुड बी प्लेइंग अ पियानो, जैसे कि क्या रंगे महफिल है दिलदारम 1966 की, दिल दिया दर्द लिया उसमें रहमान साहब पियानो पे है. दूसरे गानों में लता जी गा रही हैं या आशा भोसले जी गा रही हैं, तो ही इज इन द पिक्चर। एंड ऐसे ऐसे गाने मैंने आज चुने हैं। वक्त का गाना आज मैंने नहीं चुना क्योंकि बहुत लंबा गाना है, आगे भी जाने ना तू। वक्त में अच्छा किरदार निभाया था चनॉय सेठ का, जी हाँ। फिर जैसी फिल्में आती गई, उनके कैरेक्टर्स और सपोर्टिंग रोल में आ गए फ्रॉम हीरो रोल्स, लेकिन आज भी उनको याद करते हैं हम। उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग सब जब हम फॉलो करते हैं। 1977 में 3 हार्ट अटैक हुए उनके, 3 हार्ट अटैक्स इन 1977, फॉलोड बाय लॉन्ग बैटल विथ थ्रोट कैंसर। दिस इज अ टेरिबल एंडिंग फॉर अ वंडरफुल पर्सनैलिटी ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। एंड ही पास्ड अवे ऑन 5th of November 1984। लेट्स रिमेंबर रहमान साहब दिस आवर ऑन लाइक अ गोल्ड। मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट आपकी खिदमत में ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स 1035 मीडियम वेव ऑन गूगल एलेक्सा LaikaGold.com, also available on Radio Player and on Laika Radio Midlands. Show is sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: I've been thoroughly enjoying all the matches. Algeria beat Jordan 2-1. Norway beat Senegal 3-2. All exciting matches. Argentina beat Austria by 2-0. And we got Messi, who is the champion with the highest number of goals in FIFA. And that is 18 goals. Lekin पीछे फ्रांस के जो प्लेयर हैं बाबे, यस ही इज फॉलोइंग विद 16 गोल्स, यंग बॉय हू इज गोना कैच अप। एक्चुअली फ्रांस बीट इराक विद 1 गोल। अभी फीफा के रूल्स मैंने देखे तो एक बंदा था फ्राइडे 19th of June को, पैराग्वे का प्लेयर जो था, ही वाज मिगेल अल्मिरोन एंड ही वाज सेंट ऑफ फ्रॉम द फील्ड विद अ रेड कार्ड. Do you know why? Because he was talking to

0: ये गाना पिक्चराइज हुआ था रहमान साहब पे. यस इट्स बड़ी बहन 1949 की फिल्म एंड हुसनलाल भगतराम का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स थी. और वहाँ पे एक बैरे इतनी अच्छी बैरे पहन के वो खड़े हैं दोनों हीरो हीरोइन एंड रहमान साहब का बहुत खूबसूरत एक्टिंग था.
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Asha Bhosle ji aur Manna da ga rahe hain film Chhoti Behan mein. Beautiful lilting song. O Kali Anar ki na itna satao. Hope you're enjoying the tribute of Rahman Sahab. मीना कुमारी के साथ कितना अच्छा रिश्ता था इनका, मैं बताऊंगा कौन सी फिल्में.

ये गाना बड़ा प्यारा है, लेकिन मीना कुमारी जी की बात साहेब बीबी और गुलाम एज चौधरी शंभूनाथ हस्बैंड ऑफ छोटी बहू दैट्स मीना कुमारी एंड देन बहू रानी कौन सी थी बहारों की मंजिल एक दूसरी फिल्म थी 1968 की दुश्मन 71 में एंड गजल सुनील दत्त का प्रोडक्शन बट सुनील दत्त वॉज इन लीड बट रहमान साहब थे मीना कुमारी जी और उनके साथ जी हाँ साहेब बीवी और गुलाम क्या गाना था होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट ऑफ रहमान साहब

0: All I can say is the two songs were superb and the number of messages that I received. But let's talk about Raj Babbar. Raj Babbar ji was born on 23rd of June 1952. Well, that makes him 13 days older than me. इसलिए बड़े भाई कहता हूँ मैं उनको. और आप सुनेंगे मैंने जो उनको आज मैसेज जो भेजा था, इनका ही गाना दिल की ये आरजू, वो गाना लेकर मैंने उनको विशेस भेजी थी, तो सुनाता हूँ. ये सुनिएगा, मैंने ये मैसेज भेजा था इनको.
1: आज लाइक आर गोल्ड पे दिल की ये आरज़ू है, हैप्पी बर्थडे कहे. हाउ कुड आई फॉरगेट दिस डे. हैप्पी बर्थडे टू यू राज जी. I wish you a long, happy, healthy life. आज like our gold पे जोर शोर से आपका बर्थडे मनाया जाएगा और आपके सब गाने सुनाऊंगा मैं. That's right. Enjoy your day to the fullest. And not only that, please convey my regards and loads of love to rest of the family. This is your brother, Bali Brambat, all the way from London to sunny Mumbai.
0: और उन्होंने हंस के जवाब भी दिया, लेकिन आई वोंट गो इनटू ऑल दैट. मैं सिर्फ आपको कहना चाहता था कि ही शेयर सच अ बॉन्ड विद लाइका गोल्ड एंड ऑफ कोर्स विद मी सिंस आई वाज इन मुंबई. वो बातें अलग हैं, लेकिन लोग कहेंगे इज ब्लोइंग इज ओन ट्रम्पेट. उससे पहले मैं शुरू हो जाता हूँ. Two younger brothers, Kishan and Vinod. Vinod, sadly, is no more in this world. He passed away. Lekin Kishan ji ke saath inhone apna production house shuru kiya tha. A production house was Babbar Films Private Limited with his younger brother Kishan. And two feature films inhone banai thi. Karm Yodha, 1992 ki. And Kaash, आप हमारे होते 2003 में, विद सोनू निगम एज द हीरो. काश आप हमारे होते, वो 2003 की फिल्म विद जूही बब्बर. जूही बब्बर इनकी डॉटर, दैट्स राइट, हु इज आल्सो अ वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड शी वाज द हीरोइन इन दैट पर्टिकुलर फिल्म विद सोनू निगम डूइंग देयर डेब्यू. एंड टीवी सीरियल इन्होंने जो प्रोड्यूस की थी under the home production, Babbar Films Private Limited with his brother Kishan, was Maharaja Ranjit Singh 2010 ki TV serial. Ab born in Tundla, that's Firozabad district in Uttar Pradesh, and the ancestral roots lie in Jalalpur Jatta, which is a city in Gujarat district, Punjab, Pakistan. इनकी दो बीवियाँ, नादिरा मैरिड इन 1975 एंड दे हैव टू चिल्ड्रन. सन आर्या हु वाज बोर्न ऑन 24th मई 1981 एंड डॉटर जूही. जूही हैज़ बीन टू लाइका एज वेल एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड सो मच टैलेंट इन हर. नाउ स्मिता पाटिल के साथ इनकी शादी हुई थी 1983 में, अंटिल हर डिमाइस इन 1986. 13th ऑफ डिसम्बर 1986 वॉज वेन स्मिता पाटिल डाइड. एंड सन प्रतीक वॉज बॉर्न ऑन 28th नवम्बर 1986. ही वॉज बॉर्न ऑन 28th नवम्बर 1986 एंड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दैट शी पास्ड अवे ऑन 13th डिसम्बर 1986. बट कमिंग बैक टू राज बब्बर जी, इनिशियल स्कूलिंग की थी मुफीद आम इंटर कॉलेज आगरा. इसलिए इनकी जो डायलॉग डिलीवरी में आप उर्दू का अंदाज देखते हैं, इट्स सच परफेक्शन इन देयर. एन एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन एक्टिव सिंस 1978, दैट इज 48 ईयर्स नाउ. एंड एक्टिंग में देखा जाए तो इन्होंने तालीम पाई थी स्टूडेंट ऑफ NSD. NSD इज सच अ ब्यूटिफुल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. न्यू दिल्ली में इन्होंने जो मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग की का एक्सपीरियंस इन्होंने लिया था इन्वॉल्व इन स्ट्रीट थिएटर. टोटल 159 फिल्म्स, 143 हिंदी फिल्म्स, 15 पंजाबी फिल्म्स, 1 बंगाली फिल्म, 2 गेस्ट अपीयरेंसेस, 2 स्पेशल अपीयरेंसेस एंड 1 कैमियो. इन्होंने डबल रोल्स किए थे 1985 में मेरा घर मेरे बच्चे एंड 1993 में आंखें फिल्म. पंजाबी फिल्में तो इतनी अच्छी अच्छी की थी, मुझे सिर्फ याद है शहीद उद्धम सिंह, दूसरी थी लौंग दा लश्कारा. काफ़ी 15 फिल्में हैं इनकी एंड द नॉमिनेशन ही गॉट फॉर एक्टिंग. They were all nominations and no awards. And Best Actor in 1981, Insaaf Ka Tarazu. Best Supporting Actor, 1984, Agar Tum Na Hote. Then Best Actor, 1985, Aaj Ki Awaaz. Best Negative Role, 1994, mein, Film Dalal. And Best Negative Role again in 1996 in Film Yarana. Insaaf Ka Tarazu mein bhi kya negative role tha inka. एंड 14th डायरेक्टर ऑफ NSD. वो डायरेक्टर जहाँ पे सीखे थे एक्टिंग वहीं पे वो डायरेक्टर बने थे, चित्रंजन त्रिपाठी, सिंस 6th of October 2023. एंड इंदिरा गांधी 1961 to 1965 फॉर 4 years वॉज

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। अच्छा, बाहर इतनी खिलखिलाती धूप है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। द इवनिंग शो, इवनिंग कहाँ पे हुई है भाई? सूर्य देवता जो हम पे मेहरबान हुए हैं आज, तो उनका मिजाज जो है देखने लायक है, कल भी ऐसे ही होने वाला है। तो हैप्पी हॉट वेदर, जिनको हॉट वेदर बहुत पसंद है भाई। मैंने तो आते से ही सैंडी जी से जब बातें कर रही थी तब बताया था कि ना ना ना, मैं अकोला जिस शहर से आती हूँ वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि सूर्य देवता हमेशा मेहरबान रहते हैं। वो स्पॉटलाइट होता है ना, वैसे धूप। ओके, सो आई हैव ग्रोन अप इन टेम्परेचर्स जहाँ पे हमेशा 40s में टेम्परेचर रहता है। सो भाई मुझे माफ़ कीजिए, जिन लोगों को ये टेम्परेचर बड़ा पसंद है बिल्कुल मुबारक। मैं तो चुपचाप रूम में कोने में बैठ के टीवी देख लूँ, कुछ पढ़ लूँ, शो की तैयारी कर लूँ, ऐसी मेरी स्थिति आज की थी। ओके, आज आप लोगों ने क्या क्या किया है कि आप भी मेरे जैसे चुपचाप एक कोने में घर के पर्दे दरवाजे लगा के बैठे बिल्कुल फैंस फुल स्पीड पे, या हे भगवान हाय हाय गर्मी उफ उफ गर्मी। सो ऐसे कुछ किया। एक्चुअली वीकेंड पे ना मेरी एक फ्रेंड आई और उनका बेटा छोटा सा ही है, 1.5 साल का। और जैसे ही वो लोग हमारे घर में आए तो हमारे घर में हर एक रूम में फ़ैन है, प्लस हमारे पास में दो जो वो स्टैंडिंग फ़ैन होते ना मेटल के, मतलब इतने, देखो हम लोग पंखे वाले, अश्विनी के नहीं करने होना चाहिए मेरा नाम, अश्विनी फ़ैन वाला होना चाहिए एक्चुअली। तो उनका बेटा जो है हर रूम में जाके वो फैंस देख रहा है, क्योंकि उसके लिए वो फ़ैन जो होते ना ऊपर जो लटके हुए छत पे, तो वो बहुत नए थे उसके लिए। एंड ही इज़ लाइक शोइंग फैन फैन फैन, उसको ये मज़ा आ रहा था। तो आज का मेरा सवाल फैन से ही रिलेटेड है। इतनी गर्मी हो रखी ना, तो ऐसे कैसे हुआ कि मैं और कुछ अलग ही सवाल पूछूंगी। नाना विथ मी व्हेन आई केम टू दिस कंट्री 15 years ago, सो हम ऑब्वियसली इंडिया से जब आते हैं, एंड आई यूज़ टू लिव नियर, हमारी जो अपार्टमेंट थी वो हाईवे के पास में थी। तो एक तो वो सुहाने ट्रक्स जो होते ना जिसके म्यूज़िक अलग अलग हॉन्किंग होती है, टा टा टा टा टा टा टा टा टा, वो एक चीज़ मुझे आदत थी। दूसरा ऑब्वियसली इंडिया से तो फ़ैन की बहुत आदत थी। तो इस कंट्री में आके कितना भी ठंडा हुआ, ओनली बिकॉज वो सुन सो आवाज़ है बड़ी डरावनी और भयानक लगती थी, इसलिए वी गॉट अ पेडेस्टल फ़ैन। और वो फ़ैन का मुँह भले ही दीवार की तरफ हो, लेकिन वी हैड दैट फ़ैन। सो हम लोग वो हैं जिन्होंने आते से पहले हफ्ते इस कंट्री में आते से फ़ैन लिया। अब मुझे सच्ची सच्ची बताना, आप लोगों ने फ़ैन लिया या नहीं लिया?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप आई में नॉर्वे और सेनेगल के बीच मैच हुआ जिसमें नॉर्वे जीता है, 3 गोल्स बनाए उन्होंने, सेनेगल ने 2। और ग्रुप जे में जॉर्डन अल्जीरिया के बीच मैच हुआ, जॉर्डन ने बनाया 1 गोल, अल्जीरिया ने बनाया 2 गोल्स। ग्रुप के में पोर्तुगल और उज्बेकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, 58 मिनट्स हुए हैं, पोर्तुगल ने अब तक

0: इसकी होने वाली है तो सखना रे जो हस्बैंड जी, ये वाली जो कंपटीशन है शुरू होगी थोड़ी देर बाद में। ओके, तो आज मैं दो लोगों को टिकट्स देने वाली हूँ, मतलब कुल मिला के मेरे पास 4 टिकट है। तुम्हारे पास क्या है, हाँ बताओ? मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 4 टिकट है। ओके, और साथ में है हमारी रोज का जो एक थियरी मैं आपको सुनाती हूँ। ओके, आज की थियरी जो है ये मेरी अपनी बनाई थियरी है जो मैं अपने लाइफ पे अप्लाई करती हूँ और मेरे लिए तो बहुत काम करती है, देखिए आपके लिए काम करती है क्या। सो आई कॉल दिस थियरी कंपार्टमेंटलाइज थियरी, मतलब कंपार्टमेंट बना के रखिए। ओके, तो रेडियो मुझे बेहद बेहद पसंद है। यहाँ पे आके बैठना, आप लोगों से गपशप करना, म्यूजिक प्ले करना, ये मेरा एक सुकून वाली जगह है। आई एम पैशनेट अबाउट दिस और ये मेरा सुकून भी है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं एक्टर हूँ, मुझे कैमरा के सामने काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है। मैं एक एंकर हूँ, एमसी हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे, मैं जब लाइव एंकर करती हूँ किसी इवेंट को, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मॉडलिंग करना अच्छा लगता है, रैंप वॉक करना अच्छा लगता है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे परिवार के लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं खुद अपने आप के लिए ज़िंदगी हूँ। ओके, तो अपने रिश्ते, अपने करियर, इनको कंपार्टमेंटलाइज करना सीखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब रिश्तों में प्रॉब्लम होते हैं तो उसका इफेक्ट करियर पे दिखता है, करियर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट रिश्तों में दिखता है। ओके, मैंने बहुत अच्छी एक रील रिसेंटली देखी थी कि अपने दिमाग को ना थोड़ा खाली रखना चाहिए। एक तो लोगों को माफ़ करना है, कर दो फटाफट, तकलीफ होती है, अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं आजकल तो इमोशनल लेवल पे टू रिलीज ऑल द गुस्सा एंड एंगर एंड ग्रजेस विच वी हैव। दूसरा, लिखते चलिए ना, कुछ याद रखना है, अरे कल जाके मुझे भिंडी की सब्ज़ी बना के मेरी पड़ोसन को देना है, ये दिमाग में क्यों रखना है, लिख के रख लो नोटपैड पे, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है लिख के रख लो, दिमाग खाली होना चाहिए। तो कंपार्टमेंटलाइज, कैसी लगी मेरी थ्योरी बताइएगा ज़रूर। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, हमेशा की तरह कंपार्टमेंटलाइज करना सीखिए, सारी चीज़ें मिक्सअप करेंगे ना तो तबीयत पे होता है इफेक्ट।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
6: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
7: Lottoke halone nandala.
6: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
8: Two businesses.
9: Same town.
8: Same service.
9: One appears on page one of Google.
8: The other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: Welcome to the jungle.
11: Film? बिल्कुल fake.
10: हमारी film army वाली.
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
12: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
13: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू द जंगल।

0: Royal in cinemas 26 June.
1: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
2: मैं किस लिए फिल्म में?
3: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
0: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Updates for London at Breakfast and Drive.
1: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 39 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी। नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ, वॉल्यूम अप रखिएगा बिकॉज यू विल बी एंजॉयिंग दैट।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
10: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
9: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
10: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
9: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The Evening Show with Ashwini.
14: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। भाई हमने अभी गुजराती प्ले के लिए कंपटीशन किया, इतने सारे लोगों के मैसेज आए जो मुझे कभी पहले मैसेज नहीं करते हैं कि अश्विनी हम तुम्हारा शो सुन रहे हैं। हाय, नो हाय हेलो, ओनली खुद का नाम। आय हाय हाय, क्या सोचे थे अश्विनी खुश होगी, इनाम देगी। एनीवेज जी, हमारे जो दो विनर्स हैं इसके लिए, तो संध्या भावसा जी एक हमारी विनर हैं एंड दूसरे हैं पन्ना लखानी जी, तो आप लोग दोनों विनर्स हैं, कंग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने इस पूरे पिछले वीक में भी जीता है कंपटीशन, तो आप तक आपके ईमेल पे आपको अपनी टिकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बिल्कुल भी वरी नॉट। इस आवर का आगाज़ हमने किया था मृत्युदंड फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़ में, अनिल कयामी की आवाज़ में। एंड सेकेंड ट्रैक लिया था शक्ति फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो देखिए, हम लोग बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं और साथ में टिकट्स भी आते रहते हैं, तो बिल्कुल साथ देते रहिए और टिकट्स जीते रहिए।
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. With Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold. 10:35 a.m.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप आई में नॉर्वे और सेनेगल के बीच मैच हुआ जिसे जीता नॉर्वे में. ग्रुप जे में जॉर्डन अल्जीरिया के बीच मैच हुआ जिसे जीता अल्जीरिया ने. ग्रुप के में पोर्तुगल उज़्बेकिस्तान के बीच मैच हुआ जिसे जीता पोर्तुगल ने. एंड यस, टुडे इंग्लैंड का और घाना का मैच है ग्रुप एल में रात 9 बजे. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15-मिनट फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग.

0: सारे के सारे. एंड आई कम फ्रॉम अ कॉलोनी जहाँ पे 40 फैमिलीज 40 परिवार रहते थे, तो पूरा का पूरा कॉलोनी में सब अपने बेड्स जो है बाहर आके लगाते थे एंड सब ऐसे सोते थे. तो ऑब्वियसली समर वेकेशंस हैं भाई, तो बच्चे हम लोग सारा रात में 11:30 तक बाहर खेलते थे आउटडोर गेम्स. ऑब्वियसली उस टाइम पे आउटडोर गेम्स ही था. एंड फिर बाद में फिर कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जिसे पत्ते कहते हैं, वो खेला जाता था. एंड आराम से भाई रात में 11:30-12 बजे सोएं क्योंकि समर हॉलीडेज हैं. सुबह 5:30-5 बजे खड़खड़ खड़खड़ खड़ कुछ तो आवाज़ आती है पेड़ों की, झाड़ों की. एंड देयर वाज सर्टेन आंटीज इन अ कॉलोनी जो सुबह 5:30-5 बजे उठ के भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए पूरी कॉलोनी में घूमती थी. आई एम नॉट श्योर अगर आप ऐसे जगह से आएँ, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर एवरीबडी वॉज सो पजेसिव अपने अपने पेड़ों को लेकर कि भाई मेरे यहाँ के जो झाड़ फूल पौधे पत्ते इसमें से कोई फूल ना तोड़े. लेकिन दो आंटीज दे एक्चुअली स्पेशलाइज्ड आफ्टर सर्टेन टाइम कि धीरे धीरे बाद में उन्होंने इतना खुद को प्रो बना लिया था कि पेड़ की खड़खड़ आवाज़ भी नहीं आती थी. जो भी पेड़ की आवाज़ आती है, खड़खड़ तो दूसरे चीज़ों की आती है. आई नो मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके बोला, बट जो भी आप समझ लो. सो क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ माहौल इन्जॉय किया, मुझे बताइएगा ज़रूर.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We've all been there. Noisy uni flatmates. Music blaring. Phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
3: gold. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
7: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
8: Lattu ke halo ne nandala.
7: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
9: Great news, Tadikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Rainers Lane.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: सेकेंड आवर का हमारा फीचर है इमोशन ऑफ द डे. आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होता है टेरिफिक ट्यूसडे. अब जब टेरिफिक ट्यूसडे आ गया है तो कोई टेरिफिक सॉन्ग सुनाना तो बनता है. मेरी सनम फिल्म से आशा भोसले की आवाज में सुनिए.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड इमोशन ऑफ द डे.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
0: अश्विनी इन फॉर
2: वुमेन्स क्रिकेट अपडेट्स प्रेजेंटेड बाय कमल फुमाका एंड ब्रॉट टू यू बाय टीडब्ल्यू पेज। इफ यू आर ओवरपेइंग ऑन योर कार्ड टर्मिनल, वी'ल शो यू द ट्रुथ एंड कट योर कॉस्ट्स।
3: एंड रोबोथिंक, वेयर चिल्ड्रन डोंट जस्ट यूज टेक्नोलॉजी, दे लर्न टू बिल्ड इट। robothink.co.uk/laika।
4: भाई बड़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुई हैं वुमेन्स क्रिकेट अपडेट्स के लिए। चलते हैं हमारे संवाददाता कमल प्रभाकर जी के पास। तो कमल जी, इतनी धूप में आज आप अभी मुझे बता रहे थे काफी टैन भी हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले मैचेस के बारे में बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का पूरा सामना।
5: आज तो अश्विनी, पहले तो आपको नमस्कार, बट यस, अमेजिंग अमेजिंग डे फॉर क्रिकेट। आज तो देखो, एक तो बहुत ही गर्मी थी, इट वाज सो हॉट, आई मीन द ग्राउंड वाज इवन हॉटर देन एज यू कैन एक्सपेक्टेड राउंड एंड यू कैन सी। And you know, respect to the women, all the women played really well, fielded still well. And you know, it was a pleasure to see. But more than that, the crowd turned into hundreds and came in this weather. So the tournament is doing very well. So this morning we had Ireland playing Sri Lanka. Today at Sri Lanka, you know, what they batted so well, fielded well, and put Ireland in 134-5. And they got 134-1. Imagine the captain getting 100 in this weather. So respect to them. स्कॉटलैंड का मैच था सुबह न्यूजीलैंड के साथ, देन स्कॉटलैंड 131-7 एंड न्यूजीलैंड गॉट 132-4, सो दैट वाज अ गुड विन फॉर देम। बट वी गॉट अ बिग गेम गोइंग ऑन एट द मोमेंट, ऑस्ट्रेलिया 199-7 एंड पाकिस्तान 31-3। पाकिस्तान को 92 बॉल्स में 168 रन्स के, एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग रियली वेल, एंड आई थिंक इफ ऑस्ट्रेलिया विन दे विल बी गेटिंग 8 पॉइंट्स।
4: ओह माय गॉड,
5: सो द टूर्नामेंट इज गेटिंग वेरी वेरी टफ, स्ट्रॉन्ग, एंड इज गेटिंग टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड द सेमीफाइनल्स। सो यू नो, ऑल द टीम्स आर डूइंग ग्रेट। और दूसरी बात, कल को बहुत बड़ा मैच है, कल इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डे एंड दैट इज एट द होम ऑफ क्रिकेट इन लॉर्ड्स, एंड वी गॉट द ग्रेट इंग्लैंड taking on the mighty West Indies. So it's going to be a fantastic game.
4: Fantastic. Looking forward. कल शाम इसी समय आपकी और मेरी बात होगी और तब पता चलेगा कि स्कोर क्या रहा। अपने आपका प्लीज ख्याल रखिए कमल जी, कल फिर से आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर अपडेट्स।
5: थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग।
4: थैंक यू जी।
2: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW Pays. विजिट twpays.com/laika फॉर अ चांस टू विन अ फ्री कार्ड टर्मिनल। T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LAIKA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: लाइका गोल्ड। हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
4: एपिसोड नंबर 21 आ चुका है। साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स दीप राजा ने इस बातचीत में अपना योगदान दिया है। बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड एम्बिशन, द नीड फॉर मोर इन्वेस्टमेंट एंड विजिबिलिटी फॉर साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
7: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે।
8: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો,
9: આવા એટલે કેવા?
7: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર।
9: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવ્યો છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
7: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
9: સો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
12: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
14: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
13: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: ટેસ્ટી સ્વેગ એન્ડ સ્વીટ ચામ, એવરી સ્પૂન ફીલ્સ લાઈક અ ટ્રોપિકલ વોર્મ. મેક પૂરી એન્ડ આમરસ ઓર મિલ્કશેક ફુલ ટેસ્ટ. इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल.
16: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड हियर आल्सो विद जयमीन्स मैंगो पल्प. नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोज.
15: जयमीन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
17: Ye hai Leica Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: For £1, you'll get 125.02 Indian rupee, 367.57 Pakistani rupee, 442.32 Sri Lankan rupee, 162.32 Bangladeshi taka, 84.45 Afghan Afghani, 170.79 Kenyan shilling, 1.31 US dollars.
18: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
18: LIKA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
4: Gold is currently trading at £100.60 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है एक बार जरा टाइम चेक तो करवा दो. तो इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. सेकेंड आवर के एंड की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. इस आवर में लास्ट ट्रैक जो मैं सुनाने वाली हूँ अब वो रफू चक्कर फिल्म से होगा. वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं जरूर रखिएगा. शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज़ में है तुमको मेरे दिल ने. आय हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया सा गीत है ना. तो आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, आप लोग बताते रहते हैं कि किस तरीके से आप शो इन्जॉय करते हैं. देखिए बहुत बुरी और गंदी वाली गर्मी फिलहाल हो रखी है. व्हाट आई एम डूइंग नाउअडेज एंड इफ दिस आइडिया हेल्प्स यू. देखिए क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई बार हमारे डोर पे जो है ऑब्वियसली पोस्टमैन तो आते ही रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो कोई ना कोई लीफलेट्स देने आते हैं, किसी मुद्दे पे बात करने आते हैं. तो अगर हो सके तो अपने फ्रिज में जो है ठंडे पानी की जो पैक्ड बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक के जो पैक्ड कैंस होते हैं ज़रूर रखिएगा. और इतनी गर्मी हो रखी है, if you it would be very very very human of you to you know offer them thande pani ki bottle ya koi cold drink de sake to because I believe ek humanity ka jo हम एक रिश्ता डेवलप करते ना एक दूसरे के साथ में, भले ही स्ट्रेंजर्स हों. आज आप और हम स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन देखो म्यूज़िक के इस परिवार ने आपको और हमको कैसे जोड़ दिया. अभी अश्विनी आप सबको जानती है और आप सब अभी अश्विनी को जानती है, और आप लोगों में से किसी का भी मैसेज अगर मिस हुआ तो मुझे लगता है कि भाई सब ठीक तो है ना, इनका मैसेज नहीं आया. और कुछ तुम्हारे लेट एंट्री वाले लोग हैं, उनको तो मैंने फ़ाइन लगाना ही लगाना है, सच में अब फ़ाइन लगाना है. कुछ नए हमारे लिसनर्स हैं, कुछ साइलेंट लिसनर्स हैं, भाई कहते हैं कि तुम्हारा शो रोज़ एंजॉय करते हो. अरे यार एंजॉय करते हो तो फिर तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करते. यू नो इट इज अ फ्यूल फॉर एवरी प्रेजेंटर टू गेट अ मैसेज फ्रॉम यू. चलते हैं आखिरी गीत की तरफ.
19: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉनस्टॉप क्लासिक्स. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
20: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
21: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Danube, prime location,
20: high appreciation
21: in Dubai.
22: Hi, hello, kem chho? Hu chu Kirti Daveyana. Aa shun thai go? Arara, public demand hariti aavi rahi chu. London maru navu natak laine patni Premier League etle ke PPL. Yes, from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo
20: Patni Premier League shows at Risleaf, Alberton, East and South London, Low Room, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
23: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
24: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
25: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
24: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
25: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
24: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
25: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
26: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
27: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
28: वेलकम टू द जंगल.
29: फिल्म बिल्कुल फेक.
28: हमारे फिल्म आर्मी वाली,
30: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
29: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
28: और स्टार कास्ट है
29: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
31: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
29: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
31: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
32: किस लिए फिल्म में.
33: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
34: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
19: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app.
0: Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
1: The Evening Show with Ashwini.
3: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी जी। वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर। गजलिया कव्वाली क्या सुनाने वाली? आप सबको अब समझ में आ गया है कि एक्चुअली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो लिख के बताइए मुझे कैसा है जी। डिनर प्लेट्स के पिक्चर्स आप लोग भेज रहे हैं, यम्मी डिलीशियस डिनर आप लोग बता रहे हैं कि कितना क्या क्या किसने बना के खाया है। बट एनीवेज, आज जो इतनी हीट थी और कल भी दिन बहुत गर्म रहने वाला है, तो हाइड्रेटेड रखिएगा अपने आप को, सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। और हाइड्रेटेड रहने के लिए तो छाछ, फिर नींबू शरबत, फिर मिंट के शरबत, फिर व्हाट एल्स यार, व्हाट एल्स आप लोग क्या क्या, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी इज़ माय फेवरेट, आई लव दैट कोल्ड कॉफ़ी। बट एनीवेज, आप अपने घर में फिर शिकंजी बनाते हैं लोग, नींबू शरबत को आप लोग शिकंजी बोलते हैं, आई डोंट नो। मेरी कुछ दिल्ली की फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो जब हम कहते हैं भाई, हम लोग महाराष्ट्र से, तो हम सीधे बोल देते हैं नींबू का शरबत, तो वो कहती हैं कि शिकंजी, तो ओके शिकंजी होती होगी, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखते हैं। एंड अगला गाना, ओहो क्या बात है, अमिताभ बच्चन एंड आशा भोसले की आवाज़ में द ग्रेट गैम्बलर से।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah, like a

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: भाई अभी मैच ग्रुप एल में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच शुरू हो चुका है 22 मिनट्स अभी तक किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं दागा। उसके पहले ग्रुप के में पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच मैच हुआ जिसे जीता पुर्तगाल ने। जॉर्डन अल्जीरिया के बीच अल्जीरिया ने मैच जीता एंड नॉर्वे सेनेगल के बीच मैच हुआ उसे नॉर्वे ने जीता। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट अप टू 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 23 मिनट्स पास्ट 9। ओके, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बोलते बोलते स्वेयर भी करते होंगे, मतलब थोड़ा गाली गलौज भी करते होंगे। अच्छा, आप जो कुछ भी मैं बोलने वाली हूँ मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च ने प्रूव किया है, इसलिए बात कर रही हूँ। इंटेलिजेंट पीपल आर मोर लाइकली टू बी मेसी, स्टे अप लेट एंड कर्स ऑफन। ओके, सो रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल सेड दैट पीपल हु टेंड टू स्वेयर मोर may in fact have a larger vocabulary than those who avoid profanities. Popular belief assumes that those who frequently use swear words only do so because they are unable to express themselves in

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: मिराली दिन घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ, इट्स 41 मिनट्स पास 9। बहुत ही अमेजिंग गीत, ठहराव वाला गीत, आरती फिल्म से सुनाया मोहम्मद रफी की आवाज में, अब क्या मिसाल।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: वेलकम टू द जंगल।
5: फिल्म बिल्कुल फेक,
4: हमारी फिल्म आर्मी वाली
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
4: और स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में।
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07-533-065-549.
13: Business ke card payment charges dekh ke kabhi socha hai?
14: Yaar, main kahin zyada to nahi de raha. Pata lagane ka ek hi tarika hai. Apna latest statement TW Pay को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840। TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
16: 4 beers, please, garçon.
15: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocenter.org.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: The Evening Show with Ashwini.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1 in Indian rupee, you'll get 125.1. 367.54 Pakistani rupee, 442.2 Sri Lankan rupee, 162.35 Bangladeshi taka, 84.44 Afghan Afghani, 170.89 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
17: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
17: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £100.60 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए आखिरी बार एक बार टाइम चेक कर लेते हैं। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 9। टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय टू ऑल ऑफ यू। बड़ा मज़ा आता है आपके साथ में शो करने के लिए। लास्ट दो गीत जो हैं, एक मैंने लिया है शोर फिल्म से, दूसरा लिया है गाइड फिल्म से। एंड हमेशा की तरह बस इतना ही कहूँगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, उसे कॉम्प्लिकेटेड हम ही बनाते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन ना बनाएं। प्यार दो, प्यार लो, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए। नाम शो आप में से कोई भी अपना पावर यूज़ नहीं करता। कल फिर से बहुत धूप रहने वाली है, सनस्क्रीन लगाइए, पानी पीजिए, अपने साथ में ठंडा कुछ कैरी कीजिए, अम्ब्रेला भी लीजिए, एंड कल शाम माय फेवरेट डे उसके लिए आ जाइएगा, फील गुड वेंसडे के लिए। ऑन दैट नोट आई से बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
9: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
18: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।
19: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra? आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 Power line.
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
4: Latuke halo ne nandala.
3: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
6: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
9: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
8: डेजर्ट सफारी,
9: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
8: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
9: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल
10: Auto protected.
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: nights. Hit tracks non-stop throughout the night.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protection.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th. 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: Welcome to the jungle.
5: Film? Bilkul fake.
4: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में.
10: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinna, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
11: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी.
12: You know, I fans shout at football matches.
13: Oh, wake up!
12: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
15: पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: Breaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल Auto protected.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner Like Radio.
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Haze.
6: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।